0: एक बात बोले श्री कालिका माई भगवती की
1: जय,
0: भक्तर भगवान की
1: जय,
0: भक्त वत्सल भगवान की
1: जय,
0: सारा भक्त प्राणी की
1: जय।

0: Sonia.
1: Extreme energy drink.
2: सामुदायिक पहुँच का लागि संचार रेडियो सैलुङ सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ज़।

बाइसिकल में आया मैं तो, मुझको रोकेगा कौन और कैको, मेरा मूड में डांस करेगा, किसी का डैडी से नहीं डरेगा, जिसको जो भी है करना।

नमस्कार रेडियो सैलून सामुदायिक एफएम बैंड में थपलो साथ में गायत बाट हो भद्र प्रसाद साहब बट आज विक्रम संवत 2083 साल श्रावण शुक्ल पक्ष सन 2026 अगस्त 16 तारीख श्रावण 31 गते आइतबार चौथी तिथि अब स्तुति करूं आयु द्रोण कुमार कैसरी हो साक्षेण कल्पय भरी

नौश काय सारे दौलतले परिपूर्ण होस पवन जाय नहीं परे का घरे मन राखुन सबले दुर्योधन समान कर्णै समान दानमा तागत श्री बलराम कैसरी होस सद्वात कै काममा राजा धर्म कुमार कैसरी होस श्री ब्रह्म ज्ञान आने विदुर कैसरी ज्ञान होस सुजनमा मानुन बढाले पनि कृति उज्ज्वल होस् सुत सहित का

जय श्री सचिदानंद गुरु महाराज को जय। जय श्री शांताबाई जी लगायती महात्मा जी को जय। हरिओम तक्षोम।

द्वापर युगमा कृष्णजीले अर्जुनलाई वहाँ द्वापर युग कृष्णजीले अर्जुनलाई वहाँ आत्मज्ञान दिनुभयो कुरुक्षेत्रमा आत्मज्ञान दिनुभयो कुरुक्षेत्रमा आत्मज्ञान दिनुभयो कुरुक्षेत्रमा।